0: नमस्कार नगरकर, आपणक तहत रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा। वेळ झाली आहे थोड्या गप्पा थोडी गाणी या शोची, आणि तुमच्यासोबत मी आहे RJ आदी। तेव्हा सुरू करूया आपला आवडता थोड्या गप्पा थोडी गाणी हा शो। मित्रांनो, या चित्रपटात डाकू गब्बर सिंग यांची भूमिका साकारून अजरामर झालेले अमजद खान पुढे बराच काळ गब्बर सिंग म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले। आपल्या अभिनयाच्या जोरावर आपली कारकीर्द यशस्वी करणारे अमजद खान यांनी जीवनात अनेक चढ उतार पाहिले। यशाचा आलेख कधी वर तर कधी खाली असा असताना सुद्धा जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत अभिनय करणारे अमजद खान यांचा जीवन प्रवास आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवातीला, कितीने आदमी थे अरियो सांभा असे एक से बढ़कर एक डायलॉग आजही ऐकले जातात। सुरुवातीला ऐकूया शोले मधला त्यांचा हा सुपरहिट डायलॉग।
1: कितने आदमी थे
2: सरदार? दो आदमी थे।
1: दो आदमी। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों धिक्कार है, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? कितनी गोली है?
2: छह सरदार,
1: छह गोली है इसके अंदर, छह गोली और आदमी थी। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमको नहीं पता,
4: हमको कुछ नहीं पता।
1: इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला,

0: ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।